0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: ये है कमल चाय का पाकिस्तान।
1: दा चल कप समा दे और कप अगर दे वो हल ये कमर दे। कमर चाय द पाकिस्तान नंबर वन चाय, रंग बे मिसाला खंद ला जवाबा। कमर चाय द पाकिस्तान मशहूर चाय दा कुमची द पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान पहर कोर और पहर होटल के इस्तेमाल की।
2: नेमनी नेमनी दोस्त वजल वर्तमा हम द कमर चाय वही दीदी हो पलाला बई मनी सो दे लाची और द बाजार न बई द कमर चाय पजे नूर बेखंद चेहरा पा महकड़ी हुई
3: दाजल ब कमर चाय रावड़म खुदा बराता चरता मिलाउशी
1: दा बताता पो बटाग्राम कुजबांडा मेरा बांडीगो चतर प्लेन ताकोट कर्ग और बना बाजारों ने लावा द बटाग्राम और अलाई पर हर गट और उड़ू की जनरल स्टोर के मिलावेगी। पो बटाग्राम की द पीएसओ पंप सर नजदीक द सलीम एंड ब्रदर्स दुकान नहम अखस्तले शई द कमर चाय पाड़ा नूर मालूमात पदी नंबरों तरला सकवले शई 0320 9000 920 बल नंबर दे 0314 92 490 83।
4: जहाँ मीठी बोलियाँ बोली जाए
0: वहीं बनता है कमर चाय का खूबसूरत पाकिस्तान। कमर चाय
5: आसान रोजगार द पारा शॉर्ट कोर्सेज मेडिकल फील्ड के शॉर्ट कोर्सेज कबूल द पारा बा इतिमादा इदारा वर्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बटाग्राम वकाला कोर्सेज इज द कबूलो बेहतरीन मौका हेल्थ टेक्नीशियन सर्जिकल टेक्नीशियन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन लेबोरेटरी टेक्नीशियन फार्मेसी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन और फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन अलकानो और जिनको द पारा दाखिले शुरू दी दे सरसरा कैटेगरी बी फार्मेसी स्टोर लाइसेंस दबारा होम दाखिली शुरू दी वर्टिस कॉलेज बटाग्राम मेडिकल फैकल्टी द खैबर पख्तूनख्वाना इलाहाक शिविदा हेल्थ फाउंडेशन के पी के नहुम रजिस्टर्ड DHQ अस्पताल बटाग्राम के बाद क्लिनिकल ट्रेनिंग होम दर कवले की मजीद मालूमात दबारा वर्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बटाग्राम तशरीफ रावड़े पते याद सहते वर्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिलमुकाबिल अल-फकीर शॉपिंग मॉल नज PSO पेट्रोल पंप बटाग्राम MD रहीमुल्ला यूसुफ जई सिपसरा पदी नंबर हम राबिता कौली शे 0997-310-240 मोबाइल नंबर दे 0347-955-43-27।

हाँ जी, ग्रामीण ओरिजिन कुत्ता सोरे रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दे जिम गदी 4K कॉस्मेटिक स्क्रीन पे ताउन सरा प्रोग्राम तास दियो लो सुना तुर दोला सुबजो पूरी है पर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम बांदे और 0997310400 मंता सुनते टेलीफोन को लेशे दी सरा सरा 0309711899 मनी मुक्ता टेलीफोन हम को लेशे और मैसेज हम को लेशे दी सरा सरा तासो जिम गदा प्रोग्राम मैसेज हम रा लेगले शे और मुंग गुरु जमुग और फहीम भाई दो मुंग तदियो नात दरखास्त कर दे और दू तदा नात चे दे गुरु चे दा नात मुंग सरष्टे और कनिष चे दा नात दू ता प्ले कुछी और गुरु चे दा दे नात अल्फाज से दीजी।

0: ऑफर में शामिल हो जाएं।
1: आसान रोजगार द पारा शॉर्ट कोर्सेज मेडिकल फील्ड के शॉर्ट कोर्सेज कबूल द पारा बा एतिमादा इदारा वर्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बटग्राम वकाला कोर्सेज इज द कबूल बेहतरीन मौका हेल्थ टेक्नीशियन सर्जिकल टेक्नीशियन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन लेबोरेटरी टेक्नीशियन फार्मेसी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन और फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन अलकानो और जिनको द पारा दाखिले शुरू दी दे सरसरा कैटेगरी बी फार्मेसी स्टोर लाइसेंस दबारा होम दाखिले शुरू दी वर्टिक्स कॉलेज बटग्राम मेडिकल फैकल्टी द खैबर पख्तूनख्वाना इलाहाक शिविदा हेल्थ फाउंडेशन के पिके न होम रजिस्टर दा डी एच क्यू अस्पताल बटग्राम के बाद क्लिनिकल ट्रेनिंग होम दर कबले कीगी मजीद मालूम दबारा वर्टिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बटग्राम तशरीफ रावड़े पते याद सहते वर्टिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پیو سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا فدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے ریڈیو امن 88.4 بٹگرام
3: امن دروح سندر ادا

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
3: گرانو ریدن کو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام دے دا وقتاسو زمونگا اسلامی نشریات آوری۔

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बडग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बडग्राम ट्यून किया।
0: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का। ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का। एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का। एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली।
2: प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चबके तास्ता दरकवलेशी द दिन पोहा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा। रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

बिल्कुल जनाब जमा मीना वालो कुम कुम जे के जम प्रोग्राम हो रहे मंग द मैसेज हो के आवाज क्लियर दे ना गुरु जे पहले मैसेज शो के विच आवाज क्लियर दे मामू चाचू भैया

अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो जी? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए, आप कैसे हो? रेडियो मन के तमाम सुनने वालों को ईद उल अजहा मुबारक। आई एम हिरा, हिरा खान फ्रॉम बटग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया हिरा खान, अल्लाह आपको खुश रखे।

0: 09977310400 जो कॉल तरफ था गुरु सोखते हो।
1: अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कल जेदा सड़ी तंगूल के
0: तंगूल खोना की खुदे खेर दे प्रेशर के दे पहले चले दे। हाय ब्रो अख्तर दे मुबारक शा जा अनाया ये मां सासु मुबारक शा और खेर मुबारक जमाने तरफ ना आयजा सिदरा हेना सारा सुहाना इकरा दुआ जेमल चमन गुल अख्तर मुबारक कबूल के इट्स मी अनाया डेरा मनना और ठोल अख्तर मुबारक की कबूल के खा।